एको पसनया दूजा कै दृष्टार अश्वदि आप कथे आप सुनने हार आपे एका विस्थार जातिस भावे ता सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाय तुम ते भिन्न नहीं किछ होय आपन सु सब जगत परोय जागो प्रभु जी आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जन सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोय न मारे सो मुआ जिस मनो विसारे तिस तज अवर का को जाए सब सर एक निरंजन राय जी की जुग जा

अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रह बे आप प्रत वाले जी अनुभव बात जो जो रचो सुत से ध्यात जिस भावे तिसलाय मिलाए भगत करे हर के गुण गाय मन अंदर विश्वास कर मान्या करण हार नानक एक जान्या जन लागा कर गे के नाय तिसकी आसना बिरथी जाय सेवको सेवा बन गाई हुकम बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्या निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अंधन पूजे गुर कै पैर ए लोक सुखी परलोक सुहेले नानक हर प्रभाव पे मेले साध संग मिल करो नंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण काय सुआओ आठ पैर पर पेखो नेरा मिटिया ज्ञान मन से अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हालत बल दोले सवार राम नाम अंतरोधार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिसमन मिलते सांच परिखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मनते भव जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे ने वे खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माए नानक बोर नया वे जाए तिस्ते दूर का को जाए उबरे राखन हार ध्याय निर्भो जपे सगल भव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभु राखे तिस नाई दुख नाम जपत मन हो व सुख चिंता जाए मिटे अंकार तिस जन को कोय ना पहुँचन हार सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा नानकता के कारज पूरा मातपुरी अमर जा की दृष्ट दर्शन बेखद उदर सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी प्रुख प्रदान जिस मन बसे

कै मन लागा हर रंग। जय जय शब्दना हदवाजे, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे। प्रगटे गोपाल मात के माथे, नानक उदरै तिनके साथे। शरण

तेरा जरे जरे विच वासा तेरा भगतां नूं परवासा ठठे दिल नूं दिओ दलासा मन लो अरजां मेरियां ਸਭ ਢਾਈਆਂ।

असा मिट्टी दा मनारा बन टह गिया गल्लां दिल दियां दिल विच रह गिया आसा मिट्टी दा मनारा बन टह गिया सिर जिंदा दे मुसीबतां दा पै गिया जिंदा दे मुसीबतां दा पै गिया ते होनी इक तान के लड़ी कोली खड़के खड़के जंदा ने ताह मारिया मच्ची जदों शेर दी मड़ी मच्ची जदों

तेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना। सवनागला सवरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाई घर तेरे, घर ता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा शिव सला तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कन्हेरे। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाई घर तेरे, साचा नाम मेरा आधार हो, साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया। करशात सुख मनाए बस्या जन इच्छा सब पूजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दे बढ़ियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द रूप यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पन शब्द घर सभा गै, घर सभा गै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तैस खोवा तित घर अनहद वाजे।

साचे साहिब स्यों मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ सब जी तेरे दयाला अपने भगत करहे प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई।

ऐसा ब्रह्मद्यागवर कदलागो गुरु प्रसाद आनक मन जागो जय प्रसाद प्रगट संसार ते स्वरूप मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मनुर्दूता को जाप जय प्रसाद कार्य पूरे देह जान मन सदा।

0: ब्रह्मज्ञानी के मदरसत समान, ब्रह्मज्ञानी के नाय अभिमान, ब्रह्मज्ञानी ऊँचते ऊँचा मन अपने सबते नीचा, ब्रह्मज्ञानी से जन भय नानक जन प्रभाव करे, ब्रह्मज्ञानी सल गिरीना तमृस ब्रह्मज्ञानी चीना, ब्रह्मज्ञानी की सब प्रमया, ब्रह्मज्ञानी तकज पुरा न भया, ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टामृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी बंधन दे मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी के निर्मल जुगता, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी एक उपरगास, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाहम,
1: परोपकार उमाह, ब्रह्मज्ञानी के नाही कंधा, ब्रह्मज्ञानी ले ताकत बंदा, ब्रह्मज्ञानी के हो सुबला, ब्रह्मज्ञानी सुबल फला, ब्रह्मज्ञानी सकल उदाहर नानक, ब्रह्मज्ञानी जब सकल संसार, ब्रह्मज्ञानी के रंग, ब्रह्मज्ञानी के बस संग, ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार नाम, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सस जागत, ब्रह्मज्ञानी अमुद्यागत, ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदानंद, ब्रह्मज्ञानी स्वजनवास नानक, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेदा, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता, ब्रह्मज्ञानी के हो अचंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभाप, ब्रह्मज्ञानी का प्रभाप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श प्रभागी भाई है, ब्रह्मज्ञानी को बलबल जाइए, ब्रह्मज्ञानी को खोजो मैं सर, ब्रह्मज्ञानी नानक, ब्रह्मज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी के सकल मनमा है, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने पेहित, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथा जाद आखिर, ब्रह्मज्ञानी सर्व ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंतना पार नानक, ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सबसे इसका करता, ब्रह्मज्ञानी सजीव है नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ करात, ब्रह्मज्ञानी का सब उपरिहात, ब्रह्मज्ञानी का सकलकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा, ब्रह्मज्ञानी बनी नारक, ब्रह्मज्ञानी सबका ताही श्लोक उधार है, जवंत्र नाम सर्व विख्य भगवान, विक्रमुख ठाकुर नमस्कार है, नारक अपर्स सकल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्यान रसना परस मन में प्रीत नंजन दरस प्रत्य रूप नखे नेत्र सा की डल संसंगेत कर न सुने कहो कोई निंदा शब्द जाने आप उसको मंदा, गुरुप्रसाद विख्या पर है मन की वासना मन ते टहरा इंद्रजित मन दो तेरे नाथ कोर मरे को ऐसा परस वैष्णो सो जिस पर सो प्रसन्न प्रसन्न की माया ते हुए पिन कर्म करत हो वह नह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल तरम काउ फल की इच्छा नहीं भाषे केवल भगत कीर्तन संग्राज मन तन अंतर सिमरन गोपाल सबूबर होत कृपाल आप दृढ़ अब रहनाम जपावे नानक वैष्णव परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सकल त्याग जिसका संग मंत सकला पर हम कर पूजे सकल पार ब्रह्म साजंग पापा मलखो वै तिस भगवती के मत तुम भो वै भगवंती त्याल करे नदनीत मन तन अर्प सिंह प्रीत हर कैचन हृदय सावे नानक ऐसा भगवंती भगवंत को पावे सोवर्ण जो मन पर बोध है राम नाम आत्म में सोधे राम नाम सारस्वी वे उपनत के उपदेशक जीव हरि कथा हृदय सावै सोपनत फिर जो नाया वै वेद प्रणत सिमरत बूझे मूल सुख मैं जाने स्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उसपनत कुछ दादेश बीज बंद सर्प को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम जो जब किसीगत हो शासन पावे जिनको कर कृपांतर उतार है पशु प्रेत मुगत पाथर को उतार है सर्वरोग का खुद नाम कल्याण मंगल गुण काम कहो जुगत के तैरना पाइए धर्म नानक तिसमिल जिस लिखया तुर करम जिसके मन पार पान वास तिसका राम सत रामदास आत्म राम तिसने तरी आया दास चंद्र पाया तन पाया सहन गढ़ नगढ़ जान सोदास दर गया परमान अपने दास को आप कृपा करे तिसास को सुख सो जी भरे सकल संगातम उदास जुगत नारक रामदास प्रभु किया गया तुम तावे जी मो शोक कहा तैसा तैसा शोक सदानंद तेना ही वियोग तैसा स्वयं तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा है मान तैसा अंग तैसा राजान जो वरता ईसाई जुगत नारक ओपुर की जीवन मुगत पार उनके सगले ठाओ जित जित घर रखा तैसा तन नाओ अभे करण करावन जो प्रभव सोई फुन हो पसरे हो अपन अतरंग पसरे हो आप हो अनतरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता विनाश दास दास दयाल स्वर स्वर नानक भय निहाल श्लोक

बृहस्पति कई कोर हो पुजारी कई कोर आचार व्यवहारी कई कोर भरतीतवासी कई कोर भर ब्रह्मा उदासी कई कोर वेद के स्रोते कई कोर तबिसर होते कई कोर आदम ते अंधारे कई कोर कब कहा विचार है कई कोर नवतन नाम ते हवन न करते कांत न भावे कई कोर भय अभिमानी कई कोर नंद ज्ञानी कई कोर ग्रहण कठोर कई कोर विघातम निकोर कई कोर परदर्प कोर कई कोर पर दुख न करे कई कोर मा आश्रम माए कई कोर प्रदेश प्रमाए जित जित लावत तित लगना न करते कि जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजस्व भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पात्र प्रखंड जाय कई कोट पमण पाणी बैसंदर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशिर सुर नखत्र कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र सगल समोरी अपने सूतार है नानक जिस भाव तिस्त संस्थार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद पुराण समर्थ शास्त्र कई कोट कीरन समुद कई कोट नाना प्रकार चंद कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी मेयर स्वरण थी वे कई कोट जाख किनर पिसाच कई कोट भूत प्रेत शुकर मृगाज सब दे नेरे सबूत है दूर नानक आप अल्प त्रया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर वासी कई कोट जन्म है जीव है मरे कई कोट बोझोनी फिरे कई कोट भेड़ दिखाए कई कोट काले दखवाए कई कोट किए धर्म कई कर्माए हमें चिंग जाजा माना तह तह राखे नानक सब के प्रभु के हाथ है कोट भय बैरागी राम नाम सत्य नु लागी कई कोट प्रभु खोजन ते आत मैं पार रम लहनते कई कोट दर्शन पर प्यास तिन को मिले प्रभु नाश कई कोट मांगे सत्संग बार रम तन लागा रंग जा जिनको होए आम सुप्रसन्न नार ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट है अवतार कई जगत कीनो विस्तार कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट हो अवतार कई जगत किनो विस्तार कई बार पसरे बासा सास था कई कंकार कई कोट किने वो बात प्रत्यय प्रमाण समात ताकांत जाने को आपे आप नरक सोए कई कोट बाप उनके दास तिन होता तम प्रकाश कई कोट तत्के वेद स्थान हारे कोने त्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भवे सद सद ही जीवे कई कोट नाम उनका तम रस सह समा प्रजन को सास सास समार नानक होए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोय नानक दिस बल हारण है जल थलमय सोए यशवदी करण करावन करने जो कुछ दस भावे सोई हो खिलमय था पुथा मन हार अंत नहीं किस बार आवारा हुक्म धार अधर रावे हुक्म जो हुक्म समावे हुक्म उच नीच व्यवहार हुक्म मेरे करंग प्रकार कर कर देखे अपनी विड़ियाई नानक समय रहा समाई प्रभाव है मानुख प्रभु पावे मानुख गत पावे प्रभाव तब पात्र त्रावे प्रभाव बिन शास्त्र रखे प्रभावित हर गुण पक्ष है प्रभावित अपित उद्धार आप करे अपन विचार द्वा सरा का आप स्वामी खेरे भिक्षे अंदर जामे जब स्वीकार करावे नानक दृश्य और ना आवे कौ मानुक तो क्या हो आवे जो भाव सोई करावे इसके हाथ हो तो सब कुछ ले जो स्वभाव सोई करे अनजानत भिख्या में रचे जी जानत आपन आप बचे पर मैं पूला दे दुस्तावे नमक माए चार कुंड फिरे आवे कर करवास अपनी भक्ति दे नानक दे जन्नाम मिले खिन में नीच कीट को राज भारम करी नुवाज जाका दृष्ट कसुनाया वह तिस तत्काल दृष्ट प्रगटावे जाको परि करे बख्शीस ताका लिखाना गने जगदीश जियो बन शब्द की रास गगड़ पूरन ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जी वे देख बढ़ाई इसका बल नहीं इस हाथ कनक रावण सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो भावे सोई फुन थियो कबो ऊंच नीच में बसे कबो हो सोग हरक संग हसे कबो निंचिन व्यवहार कबो ऊब आकाश बयाल कबो बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार

गर्भ गले अश्वरी जिसके अंतर आजमान सो नरक पाती हो स्मान जो जान है जो हनुमंत सो हुवत मिष्टा का जत आप उसको करमत कहा वह जन्म रह भोजन भ्रमा वह धर्मभूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुकत आ गया सुख पावे तनवंता होय कर करवावे तृण समान का संग न जावे बौलस कर मानुख ऊपर करें आस बल भीतरता का होय विनाश सब दे जाने आप बलमंत किसमें खिनव हो जाए बसमंत किसे न बदे आप अंकारी धर्मराज करे खुआरे गुरु प्रसाद जा का मेडे मान सोजन नानक दरगाह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सकले ब्रथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरुख फिर अवतार अनक जतन करा तुम निद्रवाय हर दरगाह को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे से भलाई निकट ना आवे सर्व गिरेन जा का मन होए कहू नानक ताकि निर्मल सो जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको उसको ना ही कोई जब है जाने मैं किस करता तब लग गर्व जोर मैं फिरता जब धारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाय तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद ना रखो छूटे सहस खटे लक्को उठता वै तृप्त ना आवे माया पाछ पावे अनक भोग भिख्या के करे न तृप्ता वै खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ वृथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए उठभागी किसे प्राप्त होए कर्ण करा मन अपने आप सदास्ता नान खर जाप कर्ण करा मन करने हार इसके हाथ का विचार जैसी दृश्य करे तैसा होए अपे आप प्रभ सोए जो कुछ गिनो सो अपने रंग सब दे दूर सबो कह संग बुझे दिखे करे विवेक आपेक आपे अनेक मरे ना मन से आवे न जाए नानक सद ही रहा समाय आप उपदेशा समझे आप मेरे चा सबके साथ आपकी नो आपन विस्तार सब कुछ कहो करने हार उसते पिन कहो कुछ होए थान थन दरे को सोए अपने चलता आप करने हार कहो तक करे रंग पार मन में आप मन अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब की ना।

निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी, घर घर सुनी श्रवण बखानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरन जो जन परै सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपति। संत के दुखन आरजा कटै, संत के दुखन जमती नहीं छुटै, संत के दुखन सुख सब जाय, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभाती हीन, संत के अते को अखे न कोई, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संत नक भी तरह, संतन के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग जू लवै, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन करवाए, संतन के दुखन तृष्णा में शलै तृष्णा में जलै, संत के दुखन सबको शलै, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए, संत की कथाओं को नाहे, नानक संत भावे ता वो भी गत पाए, संत का नत कमा अताई, संत का आनंद खंड कर न पाए, संत का नत कमा त्यारा, संत का आनंदक परमेश्वर मारा, संत का नंद राज दीन, संत का नंद दुखियार दीन, संत के नंदक को सर्व रोग, संत के नंदक को सदाब जोग, संत की निंदा दुख में दुख, संत भावे नानक संत भावे ता उसका भी होय मोख, संत का दुख सदा पवित्र, संत का दुख से गाना ही मिल, संत के दुख गौडा न लागे, संत के दुख को सब त्याग है, संत का दुखी माँ अंकारी, संत का दुख सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म मर है, संत की दुख ना सुख ते टर है, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावे तलय मिलाए, संत का दुखी अजबी टूट है, संत का दुख कि काज न पहुँचे, संत के दुखी को ध्यान प्रमाई है, संत के दुखी को उजड़ पाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किशनाए, अपन भी आपे ही खाए, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत भावे तलै उबार, संत का दुखी यूं बिललाए, जो जल बिहूं मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, जो पावक ईंधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआड़ तुल खेत महे दुवेला, संत का दुखा दुखी धर्म दरैत, संत का दुखी सत मिथ्या कहत, कृतनंद का तुरही पया, नानक जो भावे सोई थे आ, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत की दुख को दरगह मिलाए सजाए, संत का दुखी सदा सहकाये, संत का दुखी न मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजन आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न तृष्ट कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया कृत न मेटे कोई, नानक जाने साचा सोए, सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु करो दिन रात, तिसे दे आओ सास करा सब

जिसका हुक्म वो सुख हो, जिसका नाम रक्कंठ पर होए, समर समर समर प्रभु सोए, नानक भगन लागे कोय उस्तत मन मह कंरुंकार, कर्म मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेक ठाल को कारंग, साध संग मन सह सब संग, चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सबन हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, वडभागी ते जन जग माय सदास्तार के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार, से धनवंत गनी संसार, मंतन मुख बोले हर मुखी, सदास्ता जानो ते सुखी, एको एक एक पशान इत उत की, ओसो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या, नानक ते निरंजन जान्या, गुरु प्रसाद अपन आप सुझे, दिखे जानो तृष्णा बुझे, सत्संग हर हर जस कह, सर्व रोग ते हर जन रहत, अंदन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ में सोय निर्वाण, एक ऊपर सिजन किया साध सी कटी जम की फासा, पार ब्रह्म की स्मरण भूख नाम से न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चिंत्या वै सो संसवेला नहीं डुलावे, जिसको जिस पर अपना कृपा करे सो सेव को किसते डर है, जैसा साध ऐसा दृष्टा अपने कार्य में आप समाया, सोद सोद सोद सीजिया, गुर प्रसाद तत्सबूजिया, जब देखो तो सब कुछ बोल नानक सो सुखम सोय सूल, न किस जन्म न किस मर है, अपन चलता भी करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, कार्य धारी सर्वश्रेष्ठ, वहां पे आप सकल में आप अनुरुद्ध था पुथा, भवनासी न एक खंड तारण तार ब्रह्मांड, अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जब नानक जाप, जिन जाता सो सोभावंत, सल संसार उदरह धनमंत, सेवक सकल उदाहरण, प्रभु के सेवा दुख विशाल, नाभ में लय कृपाल, गुरु का सब जो भय निहाल, उनकी सेवा सो लागे जनो कृपा करे, बुढ़भागे नाम जोत पाए विश्राम, नानक त्रिपुर को उत्तम करमान, जो करे सब के रंग सदास दाब सैर संग, सह सुबह हो वह सो होए, करण यार पछाणे सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा साध ऐसा दृष्टाना, जिस जो भी असमाय समाय उस गुरुदान उन्हों बनाया, उसको आप दिनों मान, नानक प्रभु जने को जान, श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु वृथा जानन हार, तिसके संग सग उधरे जाके सिमरन उधरी है, नानक तिस बलिहार अष्टपदी, टूटी गानन हार गोपाल, सर्व जी आपे प्रतपाल, सकल की चिंता स्मरण माय, तिसने वृथा को ही नाय, करी मन मेरे सदा हर जाप, अपनाशी प्रभु आपे आप, अपन किया कछु न होए, जैसो प्राणी लुच्छ कोय, तिस बिना ही तेरे किस काम, कितना जब एक हर नाम,

सुमिलता है शुभ कर्माना पर कर्म बनाने पैंदे ने जस दिंदा है जो दुनिया जस उस दे गाने पैंदे ने और एक उस दी

0: संगति लेख लग जू कड़ी
1: ते आयो जी का नाम लैन योदा चेता ना रहा रसना मिली सी सत नाम कहण

0: सोने हाथ दे सोब दा बाज है नी
1: भीख मशाद है जिन्ने हैरान कीते आन सूला ते पीरा दा पीर सुता पुत्त वार के पंथ दी शान उत्तों

0: कह नानक सच्चे साहेब
1: क्या नहीं कर दे रे साचा नाम मेरा आधारू
0: साच नाम आधार मेरा
1: जिन भुखा सब गवाइया
0: कर शांत सुख मन आए वसया
1: जिन ईर्षा सब पुजाइया
0: सादा कुर्बान किता गुरु बिटाओ
1: जिस दिया एह वडियाइया
0: कह नानक सुनो संतो
1: शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारू
0: वाजे पंच शब्द तित कार सपागै
1: कार सपागै शब्द।

हे गुरु कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम ना जाने मेरा वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु अरदास को अंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी सहाय पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लिंग ध्याय फरंगत गुरती अमरदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर गोविंद नाम सिमरौ श्री हरणाय श्री हर कृष्ण दे हइया जस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौन दगावे ताय सब थाय जी सहाय धन धन दसमेश पातशाह साहिब श्री गोविंद सिंह महाराज सब थाय जी सहाय दसों पातशाह के आत्मक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार वल ध्यान खालसा सिंह बालो जी वाहिगुरु।

0: प्रेम उज्जले केती छुटने नाल वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओम एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्री मुख वाक पाठ छई दस बात छई दसवीं छपे छंत प्रसाद चक्कर जिन अर बन जात अर पात नहीं जे
2: रूप रंग और ये पे को कह ना सकत कहे
1: अचल मूरत अनपो प्रकाश अंतोज के ही जय
2: कोट इंद्र इंद्रान शाहु शहान गनी जय
1: त्रिपवन में इब सुर नर असुर नेत नेत बन तिन के है
2: तब शरम नाम कथे कमण करम नाम बरना सुमत
1: भुजंग प्रया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग के पाले
2: नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे
1: नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे
2: नमस्तंग अकाय नमस्तंग अजाए
1: नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे
2: नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे
1: नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग
2: नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग
1: नमस्तंग जीते नमस्तंग बीते
2: नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अडाहे
1: नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे
2: नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगादे
1: नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे
2: नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे
1: नमस्तंग सुएके नमस्तंग अनेके
2: नमस्तंग अपुते नमस्तंग
1: नमस्तंग ने कर्मे नमस्तंग ने भरमे
2: नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे
1: नमस्तंग ने नामे नमस्तंग ने कामे
2: नमस्तंग निर्दाते नमस्तंग निर्गाते
1: नमस्तंग ने दूते नमस्तंग भूते
2: नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके
1: नमस्तंग ने तापे नमस्तंग थापे
2: नमस्तंग त्रिमाणे नमस्तंग निधाने
1: नमस्तंग गाये नमस्तंग बाये
2: नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे
1: नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे
2: नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे
1: नमस्तंग अगमे नमस्तस्त्र में
2: नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे
1: नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते
2: नमस्तंग अमद्बे नमस्तस्त्र अद्बे
1: अदेशंग अदेशे नमस्तंग पेशे
2: नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे
1: नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले
2: नमो सर्व रूपे नमो सर्व पूपे
1: नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे
2: नमो सर्व काले नमो सर्व पाले
1: नमस्तस्त्र देवे नमस्तंग पेवे
2: नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन में
1: नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने
2: नमो सर्व रंगे नमो सर्पंगे
1: नमो काल काले नमस्तस्त दयाले
2: नमस्तंग अबरने नमस्तंग अमरने
1: नमस्तंग जरारंग नमस्तंग किरतार
2: नमो सर्व तंदे नमो सबंदे
1: नमस्तंग निसाके नमस्तंग निबाके
2: नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे
1: नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते
2: नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे
1: नमो सर्व सोखंग नमो सर्व पोखंग
2: नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता
1: नमो जोग जोगे नमो पोग पोगे
2: नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले
1: चाचरी चंतवा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अबू है
2: अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है
1: अदेह है अभय है अजीत है अबीत है
2: त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है
1: अनिल है अनाद है अजय है अजाद है
2: अजन्म है अपर्ण है अभूत है अपर्ण है
1: अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है
2: अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है
1: निबूज है असूज है अकाल है अजाल है
2: है अजा है अनंत है महंत है
1: अली के निसी के निलंब है असंभ है
2: अदंब है अजंब है अभूत है अछूत है
1: अलोक है अशोक है।

0: मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो ईशिष्टे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणश
1: अनुपे अरूपे समस्तु निवासी
0: सदा सच्चिदा बुद्धदा बृद्ध कर्ता
1: अदो ऊर्ध्व अदनं हर्ता
0: परम परम परमेश्वरं प्रोक्षपालं
1: सदा सर्वदा च दाता दयालं
0: छेदी अपेदी अनामं गकामं
1: समस्तो पराज

0: गत में तपार गुण गन उदार
1: गुण प्रणाम निर्भय निकाम
0: अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड
1: अदृश्य कर्म अदृश्य धर्म
0: सर्व बनाड आंडर भांड
1: धात्री संत प्रसाद गोविंद मुकंद उदारे अपारे
0: हरियम करियम नाम।

0: काले चतर चक्र काले
1: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
0: चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए
1: चाचरी चंदना सतराय ना मित्राय ना परमंग ना पितराय
0: ना कर्मंग ना काय।

0: चारपट छंता प्रसाद सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं प्राण सर्वं त्राण
1: सर्वं कर्म सर्वं धर्म
0: सर्वं दूता सर्वं भूता
1: प्रसाद नमो नरक नाश सदैव प्रकाश
0: अनंग स्वरूपे अपंगं प्रभूते
1: प्रमाते सदा सर्वसात
0: अगा स्वरूपे निर्वात प्रभूते
1: नामे त्रिभंगी त्रिकामे
0: नरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे।

0: करीमुल कमाल है के जुर्रा जमाल है,
1: असलम प्रकाश है के हमें तो सुबास है,
0: के अजब स्वरूप है के हम तो प्रभूत है,
1: के हमें तो पसा है के आत्म प्रभा है,
0: के असलम अनंग है के हम तो अपंग है,
1: मधुपार छंद प्रसाद मन मन प्रणाम गुन गुन मुदान,
0: हर भर अगंज हर नर प्रपंज,
1: अनगन प्रणाम मन मन सला,
0: हर नर अखंड भर नर अमंड,
1: अनपवनास मन मन प्रकाश,
0: गुन गण प्रणाम जल थल मुदाम,
1: अंचिज अंग आसन पंग,
0: उपमाय अपार गत में तू दार,
1: जल थल अमंड दिस विस अपंड,
0: जल थल महंत दिस विस बेअंत,
1: अनपवनास त्रितर तुरास,
0: आचान बाहु एके सुदाहु,
1: ओ अंकार आदि कतनीय नार,
0: खल खंड के आल गुर बर अकाल,
1: कर प्रणाम चिचन नाम,
0: अंचिज गाता जितन बात,
1: अंचिज गाता नरंज बात,
0: अंटुंड पंडार अंडठ पार,
1: आडीट तर मत रीट,
0: अनवर्ण अंत दा।

0: शर्वंकर है,
1: सर्वाचा है, सर्वनाशा है,
0: करुणाकर है, विश्वंबर है,
1: सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है, कलखंडस है,
1: परते पर है, करुणाकर है।

0: सर्वातम है
1: आतम भास जस के जस
0: उजम प्रयाच नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे
1: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र
0: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे
1: नमो बिंद्र बिंद्र नमो बीज बीजे
0: नमो राज संतान संसांत रूपे
1: नमो परम तन तन तन तन स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने
0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो पोज पोजे नमो पान पाने
0: नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे
1: नमो इंद्र इंद्र अनादं प्रभुते
0: अलंकार रूपे अलंकार अलंके
1: नमो आसी आसे नमो बांक बंके
0: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
1: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
0: एक अक्षी छंद अजय अलय अभय अभय
1: अबू अजू अनास काश
0: अगंज पंज लख पक
1: अकाल दयाल अलेख पेख
0: अनाम काम गाटा
1: अनाथे परमाथे।

0: जित किए चा
1: तब चनन मन रहे हमारा अपना जान करो पतपारा
0: हमारे दुस पे तुम गावू वा फाते मोई बचावू
1: सुखी बसे मोरो परिवारा सेविक सिख सबे करतारा
0: मोर अच्छा निश्का दे करिए सब को आज करिए
1: पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रे प्यासा
0: मैं शार को अपना दिया हो जो बचो सो तुम ते पाओ
1: सेवक सिख हमारे तारी है चुंचू संतर हमारे मारी है
0: आ फाते मुझे बड़ी है मरण काल का त्रास नरी है
1: जो सदा हमारे पचा श्री अजु जो करी और अच्छा
0: पाक ले मर के हमारे साहिब संसाय प्यारे
1: दीन बन दुस्तन के हंता तुमो पुरी चतर दस कंता
0: काल पाए ब्रह्म भक्तर काल पाए शिव जु अवतर
1: काल पाए कर विषम प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
0: जवन काल जोगी सुखी हो वेद राज ज्योति हो
1: जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार।

0: सवारी सिखन को सिख गुण सुख दियो संतर को पाल मोहब्बत कियो
1: कर कर के अंदर की जाने थले बड़े की पेर पिछाने
0: चिट्ठी ते कुंच रस तुला सपर कृपा दृश कर फुला
1: संतन दुख पाए की सुख पाए सदिंगे सुखी
0: एक एक की पीर पिछाने कट कट के पट पट की जाने
1: जब कर कर के तारा प्रचा तब दे पारा
0: जब आत कर तुम कब हो तुम्हें मित देकर सब

0: महादेव को कैद सदा शिव निरंकार का चिंतने पे
1: आपनी बुध जदी बनल पम पम ददती
0: तुम्हारा लखाना जाए पसारा कैबिल सजा प्रथम संसार
1: एक रूप रूप स्वरूप रंग प्योर आपके ऊपर
0: अंडज देव जिसते जिकी नियुत कुछ कान बो रच दीने
1: कौन फूल आ जा हवेता कौन सी उपसंग रिकेता
0: सगरी से सिद्ध खाए चंपव आज गा स्वरूप चंपव
1: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगलो
2: दुषिते उठवट उत्पाता सकल मलेश को रणकाता
1: जय सुषव सुनने परे तिनके दुष्ट कुत मरे
0: तुमक जन पग परे तिहारे तिनके तुम सकल सब तारे
1: जो को कोई बात आए है ताके काल निगिन आए है
0: रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट से तेरे तत्काल
1: के पर दर्शन जाए न रो ताके ताप न मारो
0: रेत सिद्ध कर हो सब होई दुष्ट शास सब सके न कोई
1: एक बार जिंद में संभारा काल फास से ताए वारा
0: जिन नाम तिहारो कहा दर्द दुष्ट दोख ते रहा
1: करे केत में सुनन दियारी आप हाते ले उबारी
0: सर्व टोर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले बचाई
1: कृपा करी हम बचक माता कंस कर पूर्ण सब राता
0: किल भिक सकल दे को हरता दुष्ट दोख इन को छे करता
1: सुये शजब दे दियाला पूर्ण ग्रह कंदत काला
0: मन पाच द फल पावे सुई दूध न तिसे व्यापत कोई
1: रे उसने मुझो यास रसना पावे सुने मोक्ष लचत आवे
0: दूध दर पोने

0: आदमी पाइए सतगुरु मिले जिसे आए।
1: कहे नानक होर अनर सब विसरे जाहर वसे मने आए।
0: ए शरीरा मेरे हर तुम में जोत रखी तातु जग में आया।

0: करम कमाया,
1: के करम कमाया, तुद शरीरा जा तू जग में आया,
0: जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया,
1: गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया,
0: कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से उचित लाया,
1: ए नेत्रो मेरे और तुम में जो तरी हर बिन अवर न देखो कोई,
0: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया,
1: एव विस संसार तुम देख दे एव हर का रूप है हर रूप नदरी आया,
0: प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई,
1: कहे नानक नेत्र अंध से सतगुरु मिलिया दिव दृष्ट होई,
0: ए सुनो मेरे ओ
1: साचे सुनने नु पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी,
0: अमृत नारिया हुआ रसना रस मारी,
1: सच लख विडाणी ताकि गत कही न जाए,
0: कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचे सुनने नु पठाए,
1: हर जियो गुफा।

हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। बिलावल महला पंजमा ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई।

0: सतगुर प्रसाद होए कतर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिबलाए
1: हर नामे के हो वो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाए
0: इन विद पासा।

हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा में कोई न जान तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा सगल समगरी तुम्हारा सूत्र तारी तुम ते हो यीशु आज्ञा तुम